0: to the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: The beat of Bollywood. Fasten your seat belts. क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Danu Properties. Coming soon on Big 106.2. कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
1: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Millennials Unite. Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: Big 106.2

0: Big. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big. Big 106.2.

द बिग मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरिन ऑन बिग 106.2। तो एक और बार आपका स्वागत है मेरे शो पर। सैटरडे की सुबह को जो है, जब ड्राइव कर रहे होंगे आप लोग, कुछ लोग हो सकता है घर पे होंगे, सो यू ऑल कैन लिसन टू ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। इन द मीन टाइम आई ऑल्सो टेल यू सम ग्रेट ट्रिविया, सम टाइम्स अ लिटिल बिट थिंकर काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, ये सब बातें हम लोग करते रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूँगी वो है अबाउट द मोस्ट लेजेंडरी विलन्स दैट वी हैव हैड इन बॉलीवुड इन द मिलेनियल टाइम्स। ऑब्वियसली बहुत सारे हैं जो एक्टर्स मिलेनियल टाइम्स में जो कि जो हैं विलन्स बने हैं। इनफैक्ट उस टाइम पे जो विलन्स थे ना, बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, दे वर लाइक वेरी मैजेस्टिक विलन्स, डिफरेंट टाइप्स के विलन्स थे, है ना। और जब मैं विलन्स का नाम ले रही हूँ, विलन कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किया एक्टर्स ने, उनका नाम जब मैं एक एक करके लूँगी तो आपको याद आएगा, अरे हाँ ये भी, अरे हाँ वो भी, लेकिन कुछ नाम ऑलरेडी आपके मन में आ चुके होंगे। सो लेट्स सी, लेट्स नो मोर अबाउट की कौन से विलन्स का नाम मैं लेने वाली हूँ। आप लोग भी बताइएगा मुझे बिग के इंस्टा पेज पे, आप लोग डीएम कर सकते हो 106.2 बिग पे, लेकिन आई विल टेल यू द नेम सून। अंटिल देन लेट्स गो एंड लिसन टू द सॉन्ग।

एक मिलेनियल वीकेंडर पे मैं हूँ शिरिन, बिग 106.2। तो विलन्स की जब बात होती है तो ऑब्वियसली मैं एक्टर्स की ही बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले नाम आता है अमरीश पुरी। अमरीश पुरी वॉज अ लेजेंडरी एक्टर। इनफैक्ट उनके जो पूरे एक्टिंग करियर में उन्होंने जो है सिर्फ विलन कैरेक्टर ही नहीं प्ले किया है, देर हैव बीन डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स ऑफ एक्टिंग दैट ही हैज़ डन, बट मेजरली सबको याद उनके विलन कैरेक्टर्स ही हैं, नेगेटिव शेड्स वाले ही हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है सबको याद होगा मोगैम्बो खुश हुआ, ये मुझे लगता है उनकी आवाज़ में ही मोगैम्बो का जो है वो फील हमें आता है। मिस्टर इंडिया से ये डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ, इवन आज अगर आप एक बॉलीवुड पार्टी रखते हो तो आप देखोगे कोई ना कोई मोगैम्बो के रूप में ड्रेस करके जरूर आएगा। तो अगर आप लोगों ने मिस्टर इंडिया नहीं देखी है और जानते नहीं है कि मोगैम्बो खुश हुआ है किस मूवी का, तो जाइए देखिए और मुझे बताइए अमरीश पुरी की आपको कौन सी मूवी सबसे फेवरेट लगती है, एंड लेट मी नो उनका कौन सा विलन वाला रोल आपको सबसे फेवरेट लगता है। यू कैन डीएम अस ऑन 106.2 बिग या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पर जो कि है हसला_शिरिन। Let's go and listen to the next song.

मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरिन ऑन बिग 106.2. तो हम बात कर रहे थे अबाउट मिलेनियल टाइम्स के बहुत ही टॉक्ड अबाउट एंड बहुत ही फेवरेट विलन्स, नेगेटिव कैरेक्टर्स जो प्ले किए गए हैं एक्टर्स के द्वारा. पहला नाम अमरीश पुरी का लिया है. दूसरा नाम आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विथ मी, जिनका नाम है, मैं अभी लेने वाली हूँ, डैनी डेंजोंगपा. डैनी डेंजोंगपा वॉज सच अ फेरोशियस लुक उनके फेस पे लगता था और डर लगता था देख के कि यार ये आदमी सच में घातक लगता है. जी हाँ, घातक में कात्या का रोल किया था. सब लोगों को याद है कि सनी देओल जब बुलाते हैं कात्या तो उसी से सबको याद आ जाता है कात्या की शक्ल. जी हाँ, ये डैनी की शक्ल थी. तो डैनी ने इनके अलावा बहुत सारी मूवीज में जो है नेगेटिव शेड्स के रोल्स प्ले किए हैं एंड ही इज ऑलवेज लेफ्ट एन इम्पैक्ट. ही इज ऑलवेज लेफ्ट अपना छाप वहां पे. तो दैट इज द डिफरेंस, यू नो. अब इनको हम मुगैम्बो के रोल में नहीं देख पाएंगे, अमरीश पुरी को कात्या के रोल में नहीं देख पाएंगे. तो दैट काइंड ऑफ अ छाप, वो मुझे लगता है मिलेनियल टाइम्स के विलन्स अपने हर मूवी में छोड़ते थे. व्हाट डू यू थिंक एंड हैव यू वॉच्ड घातक, हैव यू वॉच्ड कात्या? प्लीज गो एंड विजिट सम अमेजिंग मूवीज बाय डैनी डेंजोंगपा. ऑन दैट नोट, लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
1: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th August, शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। Zikr brings India's master storyteller, Amandeep Khayal, with his soul-stirring show, Thak Thak. For the very first time in Dubai, एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से at Gems Al Barsha National School. Doors open at 4:30 p.m. Show begins at 5:30 p.m. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
2: Y2K hits, indie gems, Bollywood gold, your kind of playlist. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

The Big Millennial Weekender, this is Shirin on Big 106.2. तो मैं बात कर रही थी अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मोस्ट फेवरेट विलन्स. जी हाँ, विलन्स भी फेवरेट हो सकते हैं. विलन कैरेक्टर्स जिन एक्टर्स ने इन रोल्स को प्ले किया है. तो अमरीश पुरी और डैनी डेंजोंगपा के बाद मैं बात करना चाहूँगी गुलशन ग्रोवर के बारे में. गुलशन ग्रोवर, अगेन जब हम उनको याद करते हैं हमें हमारे मुँह पर एक ही बात आती है, बैड मैन. राम लखन में बैड मैन का कैरेक्टर इन्होंने किया था. बैड मैन का नहीं, ये बोलते थे बैड मैन. एंड इट वॉज रियली नाइस द वे ही यूज टू से इट. एंड यू नो विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स दैट ही हैज़ वर्कड विद, सब बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एंड द मोस्ट जेंटलमैन काइंड ऑफ अ पर्सन इज गुलशन ग्रोवर. बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल हैं. अक्षय कुमार हैज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से अबाउट मिस्टर गुलशन ग्रोवर. लेकिन ऐसे ही है ना कि मतलब मूवी में अपना पूरा एकदम क्या बोले, एकदम कॉन्ट्रेडिक्ट करके अपने कैरेक्टर से एकदम प्ले करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिंग. सो गुलशन ग्रोवर के भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं वेयर ही हैज़ रियली प्लेड वेरी वेल नेगेटिव शेड्स कैरेक्टर्स. रिसेंटली हाल ही में जो उनकी मटका किंग आई थी उसमें भी हैज़ प्लेड रियली वेल. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड गुलशन ग्रोवर मूवीज़, आई थिंक यू मस्ट गो एंड वॉच. बाय द वे, मटका किंग इज़ अ सीरीज एंड यू मस्ट वॉच इट. सो ऑन दैट नोट, लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

The Big Millennial Weekender, this is me, Shirin, on Big 106.2. तो फेवरेट विलन्स की बात हो रही है, जिन्होंने विलन कैरेक्टर्स को प्ले किया है. अगला नाम मैं जिनका लूंगी वो है अनुपम खेर. नाउ अनुपम खेर हैज़ हैड हिज फेयर शेयर ऑफ मूवीज वेर ही हैज़ प्लेड डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. किसी में बहुत ही अच्छे प्यारे पापा बने हैं, किसी में बहुत ही दुष्ट विलन बने हैं, किसी में बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान बने हैं. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज दैट ही हैज़ डन. ही इज़ गॉट अ रेंज ऑफ एक्टिंग, यू नो. लेकिन विलन कैरेक्टर्स जो इन्होंने प्ले किए हैं, दैट हैज़ बीन रियली रियली वेरी मेनिसिंग. मतलब देख के ऐसे लगता है यार क्या बंदा है ये, यू नो. एंड वन मूवी दैट आई कैन थिंक ऑफ जो विलन कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है, दैट इज़ वेयर यू नो एक दो तीन गाने के लिए मूवी फेमस है बहुत, लेकिन सब लोग बात नहीं करते हैं अनुपम खेर के एक्टिंग के बारे में. यार उसमें ही सच अ बैड फादर, सच अ बैड हस्बैंड. एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड हिज मूवीज, यू मस्ट डेफिनेटली वॉच. एंड अगेन, इफ यू वॉन्ट अ कॉन्ट्रास्ट, अगर आपको ऐसे चाहते हो कि हाँ यार विलन नहीं नहीं देखते हैं, कॉमेडी में कितना करते हैं, तो यू कैन वॉच अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ हिज मूवीज ऑल्सो. सो यू मस्ट डेफिनेटली विजिट अनुपम खेर की ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मूवीज मिलेनियल टाइम्स के. ऑन दैट नोट, लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

The Big Millennial Weekender, this is me, Shirin, on Big 106.2. तो मैं बात कर रही थी about the actors who have played villain characters, the most legendary villains of Bollywood, of millennial times. तो नाम के suggestions तो मैंने आपको दे दिए हैं. एक और नाम मैं आपको बताना चाहूंगी इससे पहले कि मैं जाऊं, because this is towards the end of the show. तो आखिरी नाम मैं जिनका लेना चाहूंगी वो है आशीष विद्यार्थी. Of course, we know that he's still acting and he is also very actively doing स्टैंड अप कॉमेडी. तो उनका स्टैंड अप कॉमेडी जो है एक बार मैंने होस्ट भी किया है, तो मुझे वो सौभाग्य भी मिला है. बट मस्ट से दैट ही इज अ वेरी हम्बल गाय, बट अगेन प्लेइंग नेगेटिव शेड्स ऑन द स्क्रीन. तो बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स वाले रोल्स उन्होंने मूवीज में किया है. कहो ना प्यारे में अगर आप देखेंगे उनका नेगेटिव शेड है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्लाइटली कॉमिकल भी बनाया गया है. ही इज ऑल्सो डन अ फेयर शेयर ऑफ साउथ इंडियन मूवीज एज वेल. सो ही इज अगेन अनदर वर्सेटाइल एक्टर जो कि हर टाइप का रोल निभा सकते हैं. If you've not watched his movies, please जाइए और उनको जो है follow भी कीजिए, उनका काम भी देखिए. मेरा काम है आपको बताना. तो on that note, I will see you next time. Until then, keep smiling and keep shining.

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: Love Variety.
1: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिंस एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2।

0: 106.2 पर कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
1: बिग 106.2।

0: Cracks, MSN Chats and Bollywood Bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Big 106.2.

0: Shanaya Kapoor, Adarsh Gaurav, and a brilliant story from Tu Ya Main this week on 36.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने
4: दो या चार
3: चार
4: कब तक वापस लौटाएगा
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में
4: चार या
3: पांच
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन ओटीटी पे क्या देखें क्यों देखें देखे भी या करें स्किप मैं सब बताऊंगा द बिग बिंज विद सिड प्ले दबाओ कंफ्यूजन हटाओ
1: द बिग बिंज विद सिड Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 37.

35. कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

number 31 from Hai Jawani to Ishq Hona Hai right here playing in the top 40 biggest hits of the week. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. मैं हूं मानसी. डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े साथ में, ऑफ कोर्स वरुण धवन. वैसे वरुण धवन इज गॉट अ ब्रिलियंट लाइनअप इन 2027 व्हिच इज 2027. ही इज ऑफिशियली सेट टू हेडलाइन यशराज फिल्म्स की फर्स्ट एवर हॉरर जॉनर की मूवी व्हिच इज डायरेक्टेड एंड रिटन बाय अभय पन्नू. प्रोडक्शन बिगिंस इन लेट 2026 विद अ लॉक्ड थिएट्रिकल विंडो फॉर 2027. वी ऑल्सो गॉट वरुण धवन की भेड़िया 2 इन 2027 एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपैंडिंग मैडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स. वरुण धवन विल रिप्राइज हिज रोल एज भास्कर. And the sequel tracks the escalating conflict between Bhediya and Betal, which was teased during the events of Thama. So, ye ek pura unka multiverse hai. Initially, Bhediya 2 2026 mein release hone wali thi, but now they are targeting 2027. And Bhediya 2 mein, of course, with Varun, we'll get to see Kriti Sanon, who's looking stunning in Cocktail 2. The movie is available on OTT. Agar aapko gym jaane ka motivation chahiye, please watch Cocktail 2 and Kriti Sanon. Is hafte Cocktail 2 se hi on number 30. Number 30.

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Happy weekend, playing you the top 40 biggest hits of the week. मैं हूं मानसी with the big Bollywood countdown. वैसे countdown तो सभी मुसाफिर fans का भी शुरू हो चुका है कि कब आएगा season 2. And of course they've announced the season 2 and बहुत जल्द release होगा. Because season 1 ended with an unresolved finale. बहुत सारी theories चल रही हैं social media पे. Sudha returns to the cafe right before leaving for Singapore with her partner Vineet. And of course उसने admit किया था that she still misses Chandar. साथ में प्रीति को मिल जाती है वो डायमंड रिंग जो चंदर उसे देने वाला था. ही वॉज अबाउट टू प्रपोज. सो यस, कांट वेट फॉर सीजन 2. एंड आई ऑल्सो कांट वेट फॉर द न्यू म्यूजिक दैट देर इंट्रोड्यूस विद सीजन 2. आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद द एल्बम फ्रॉम मुसाफिर कैफे दिस वीक ऑन नंबर 26.

0: इसी के साथ ऑन नंबर 25 वी गॉट आदित्य रिखारी
1: जिन्नी सोनी लग दी है मैनू किसे होर ना लगे लगे
0: पति पत्नी वो दो से
2: नंबर 26

0: This is the Big Bollywood Countdown.
1: All the music I love.
0: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: Fasten your seat belts, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2.
0: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 14.

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Playing in the top 40 bangers of the week. This is the Big Bollywood Countdown. Keeping you company, I'm Mansi. Hope you're having fun, enjoying your weekend. वैसे इस weekend पर if you're looking for a good watch, a movie जो आपको इटली की tickets book करने के लिए मजबूर कर दे, then do watch Cocktail 2. Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna, Kunal Dia और Ali की कहानी. While vacationing in Sicily, इनकी जिंदगी हो जाती है complicated because third wheeling करते करते कभी कभार दोस्त आपकी गाड़ी का रुख बदल देते हैं. I'll not give you any spoilers. It is a complicated love story with great locations. Like I said, जैसे ही मैंने मूवी देखी आई थॉट यार एक और बारी इटली जाना तो बनता है. ग्रेट म्यूजिक इज वेल ऑन नंबर 12 दिस वीक फ्रॉम कॉकटेल 2 वी हैव कविता सेठ, नीरज श्रीधर, ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड ओरिजिनल गाना कॉकटेल से. इसी के साथ नंबर 11 पर Durandar 2 say right here on Big 106.2. Yeah, Big Bollywood Countdown, keeping you company. I'm Mansi.
0: Number 12.

इस हफ्ते भी नंबर 7 पे फ्रॉम वेलकम टू द जंगल दैट वाज ऊंचा लंबा कद. This is the Big Bollywood Countdown, playing you the top 40 biggest hits of the week. I'm Mansi, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood, and the biggest comeback ever. I'm talking about Awarapan 2. The music is, of course, the USP of the movie, and of course, Imran Hashmi. जाने जाते हैं for some super hit music, super hit songs. Movie कैसी भी हो, Imran Hashmi अगर है उस मूवी में तो गाने कमाल होंगे. सो इस हफ्ते नंबर 6 पे आवारापन 2 से तेरा मेरा रिश्ता 2.0, विच इज द ऑफिशियल 2026 रिप्राइज रीमेक ऑफ द आइकॉनिक 2007 हिट तेरा मेरा रिश्ता पुराना. एंड द ओरिजिनल सिंगर मुस्तफा जाहिद री रिकॉर्डेड द 2.0 वर्जन एंड इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च ऑन द 14th of August. एंड मूवी की जो रिलीज थी उसके साथ टाइमिंग बहुत सही थी टू रिलीज दिस सॉन्ग. Already a hit, the movie has made more money than the first movie ever did, thanks to the millennials who are going to the theaters and reliving the Awarapan era.

0: तो दो वर्जन है इस गाने के, तेरा मेरा रिश्ता न्यू वर्जन एंड तेरा मेरा रिश्ता 2.0. न्यू वर्जन ऑफ कोर्स मुस्तफा जाहिद के आवाज में है. ये जो 2.0 वर्जन है ये मिथुन ने ऑफ कोर्स म्यूजिक दिया है एंड आवाज साज भट्ट की और साथ में सुबोध है. इस हफ्ते ऑन नंबर 6, मूविंग ऑन टू नंबर 5, a movie that's anticipated to be one of the biggest movies of 2026, Toxic, a fairy tale for grown-ups. जब ये गाना रिलीज हुआ था सोशल मीडिया पे तबाही मच गई थी. हैशटैग यश, हैशटैग कियारा, नहीं देखा है तो देखो गाना. इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग विशाल मिश्रा की आवाज में दिस वीक ऑन नंबर 5.
1: This is the Big Bollywood Countdown. All the music I love. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 1 + 1 = 3.
3: That's not right.
2: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
3: Really? And these 4 designs to choose from?
2: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
3: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
4: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
5: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in-store or online. DNC Supply.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग। अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2
0: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड। Big 106.2, the beat of Bollywood. Number 3.

0: रिक्रिएटेड फॉर धमाल 4 ओरिजिनल गाना है गुलाबी साड़ी जो मराठी में है, बहुत ही खूबसूरती से अगेन तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया है। This week on number 3, playing you the top 40 biggest hits of the week, I'm Mansi with the Big Bollywood Countdown. Time for Gaana number 1. Kaun sa hoga is week? A lot of you guessed it right and I'm not even surprised because we were all expecting this song to be number 1 because we were waiting for this song. But for now, playing you Gaana number 2 in just a bit. Cocktail 2 se recent times ka sabse khubsurat original gaana. प्रीतम, अमिताभ भट्टाचार्य एंड राघव चैतन्य की आवाज। एंड लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ यू गॉट इट राइट, नंबर वन पे इस हफ्ते कोई और गाना हो ही नहीं सकता था बिकॉज सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ।
1: फिर आओ मुझको रुलाओ,
0: तो फिर आओ दोबारा एंड रील्स देखो आप। इंडिया में जब ये गाना स्क्रीन पर आया है, मतलब मिलेनियल्स ने भी वही किया है जो जेंजीज ने सही आ रहा देखते वक्त किया था, बट ऑफ कोर्स अ लिटिल लेस ड्रामा, बट आई एम लविंग द रील्स सो फार एंड द म्यूजिक। शिवम पंडित इज बैक एंड बैक लाइक हाउ दिस वीक ऑन नंबर 1 स्ट्रेट फ्रॉम आवर अपन 2। टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय एंड मैं आपसे मिलूंगी कब, मंडे को 5 to 9 इज व्हेन आई कीप यू कंपनी। अंटिल देन यू स्टे राइट हियर फॉर द बेस्ट म्यूजिक। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन socials 106.2 big fm it is. You can say hi to me, I'm Mansi talking. Enjoy your weekend.
2: Number 2.

0: Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट.
0: Countdown.
2: Here we go.
1: सिर्फ बिग 106.2 बीट ऑफ बॉलीवुड पर.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

106.2 पे इट्स टाइम फॉर द बिग बिंज विद मी सिड। इट्स अ वीकेंड। वीकेंड का टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। 5 दिन लगातार नॉन स्टॉप कड़ी मेहनत, खून पसीना बहाने के बाद 2 दिन जो आपके वीकेंड के मिलते हैं उसमें बिल्कुल भी 1 सेकंड भी आपका वेस्ट ना हो इन स्क्रोलिंग लुकिंग एट रिव्यूज। इस काम के लिए मैं आ गया हूं। मेरा नाम है सिड। ऑल द वे फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स आई एम गोना बी विद यू। एंड what is that one piece of OTT content? Could be a film, it could be a series that everybody is talking about. Reddit threads bhar gaye hain, kisi ki performance ki tareef ho rahi hai, koi log kisi ko gaali de rahe hain, to ye sab ke bare mein baat karne wale hain. What is that one show that we are going to talk about? Halka sa into the past jayenge, but not too much. 4 mahine pehle Vijay Verma ki Matka King released on Prime Video 17th of April. इसके बारे में आज बात करेंगे। द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स एंड फाइनली द वर्डिट, वेदर यू शुड स्ट्रीम इट और स्किप इट, कमिंग अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड।

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की झप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट विजय वर्मा's मटका किंग दैट रिलीज्ड ऑन प्राइम वीडियो ऑन द 17th ऑफ अप्रैल. सो इट्स बीन 4 मंथ्स बट अभी तक लोग इसको देख रहे हैं, अभी तक इसके बारे में देयर इज डिस्कशंस गोइंग ऑन थ्रेड्स व्हिच आर एक्टिव ऑन रेडिट. सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हियर्स व्हाट द ट्रेलर साउंड्स लाइक.
1: जिंदगी ब्रिज भट्टी वो आदमी था जिसने मौके पे खेलकर इतना पैसा कमाया कि सरकारी खजाना भी उसके सामने चिल्लर लगने लगा.
2: ओह मटका किंग.
1: जिंदगी
0: एक सफर है सुहाना. सुहाना सफर है कि नहीं है ब्रिज भट्टी नाम के कैरेक्टर का, दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट. अगर आप इफ यू लुकिंग फॉर अ न्यू क्राइम ड्रामा टू बिंज देन मटका किंग इज स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो, क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय नागराज मंजुले. आप जानते हैं फेमिलियर नेम बिहाइंड सैराट, झुंड जैसी फिल्में उन्होंने बनाई है. स्टार्स विजय वर्मा, कृतिका कामरा, साई तमनकर, गुलशन ग्रोवर, बैडमैन भी इसके अंदर हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम है, सिद्धार्थ जाधव एंड जेमी लीवर. ये 1964-1975 के बीच में जो बॉम्बे का पीरियड था उसके बारे में ये शो है. इट फॉलोज ब्रिज भट्टी, एक कॉटन ट्रेडर है, ऊन के ट्रेडर, हु क्रिएट्स अ गैम्बलिंग गेम कॉल्ड मटका एंड स्लोली टर्न्स इट फ्रॉम एन एलीट पास टाइम इनटू अ मास phenomenon. So it's a very compelling plot and isse pehle ke show release hua there was a lot of pre-release buzz kyunki combination amazing hai bhai. Vijay Verma plus Nagaraj Manjule equals to amazing na, equal to almost scam 1992 wala zone expect kar rahe the. Kya us expectation pe ye show khara utra? Gonna come up in just a while. Comparison, was it a good comparison, a bad comparison? What are the good parts about Matka King, the bad parts about it, and finally whether you should watch it or not, coming up right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड, और आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट विजय वर्माज मटका किंग या प्राइम वीडियो का वो शो जो कि रिलीज हो गया था अप्रैल में. एंड द बिगेस्ट रीजन, हियर आर द गुड थिंग्स अबाउट द शो, व्हाई यू शुड स्ट्रीम इट, या द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट द शो. द बिगेस्ट रीजन एज एक्सपेक्टेड टू वॉच मटका किंग इज विजय वर्मा. ब्रिज भट्टी नाम के कैरेक्टर को प्ले करते हैं एंड द शो इज अबाउट गैम्बलिंग, सो इट्स वेरी इजी टू मेक द कैरेक्टर ऑल अबाउट ग्रीड, राइट. लेकिन ये ऐसा नहीं होता, उसको पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उसको रिस्पेक्ट चाहिए. एंड किसी की यू नो जूती के नोक के नीचे उसे नहीं रहना. ही वॉन्ट्स टू गो इंडिपेंडेंट, डजंट वांट टू लाइक जस्ट बी द यस मैन फॉर समवन मोर पावरफुल, समवन रिचर. एंड दैट्स द रियली गुड एस्पेक्ट अबाउट हिज कैरेक्टर. इज वेरी गुड एट मेकिंग एम्बिशन फील डेंजरस. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, कि जब भी कोई यू नो नेगेटिव कैरेक्टर इज द मेन कैरेक्टर इन अ शो, गैंगस्टर्स के बारे में कोई शो होता है, सो इट ऑलवेज काइंड ऑफ इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ इट इट टर्न्स आउट टू बी अ कार्टून कैरेक्टर. ऐसा बिल्कुल नहीं है, डजंट मेक इट कार्टूनिश, इट स्टेज काइंड ऑफ क्वाइट डार्क टिल द एंड. हाँ, वर्ल्ड बिल्डिंग इज ऑल्सो क्वाइट गुड. जब कोई पीरियड ड्रामा होता है तो इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ यू नो मेकिंग इट फील लाइक कि आप सेट में गलती से घुस गए, कि फिल्म सिटी के किसी शूटिंग लॉट में आप घुस गए गलती से. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, इट लुक्स लिव्ड इन, स्वेटी, टेक्स्चर्ड एंड या क्वाइट जेन्युइनली इन द 60s एंड 70s ऑफ बॉम्बे. सपोर्टिंग कास्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, साई तमनकर जैसे वेरी सीजन परफॉर्मर्स हैं, कृतिका कामरा, सिद्धार्थ जाधव, बैडमैन गुलशन ग्रोवर इज ऑल्सो देयर, ऑल डूइंग मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज. एंड एक्टिंग की तारीफ हो रही है एंड स्लो बर्न क्राइम ड्रामा इफ यू लुकिंग फॉर, देन दिस इज द शो दैट यू शुड बी बिंजिंग. एंड व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस शो वाज द फैक्ट दैट एक चीज बहुत ही क्लियरली ये बताती है, दैट गैम्बलिंग इजंट रियली अबाउट मनी, इट्स नॉट रियली अबाउट द नंबर्स, इट्स अबाउट होप, उम्मीद, एंड होप कैन बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल एडिक्शन. सो द थीम इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग. कमिंग अप नेक्स्ट, व्हाट आर द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट विजय वर्माज मटका किंग. दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of

All right, and now it's time for the verdict on the Big Binge with me, Sid K. Vijay Verma ki Matka King on Prime Video. Should we stream it? Should we skip it? Dekhe ke nahi dekhe? Very difficult question. Agar aap Vijay Verma ke fan hai, then definitely you have to stream it. There is no option, okay? Agar aapko देखना है, अगर आपको मन कर रहा है, इफ यू क्यूरियस, थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करके देखिए. अगर आपको लग रहा है कि यार विजय वर्मा प्लस नागराज मंजुले इक्वल टू स्कैम 1992 के लेवल का शो, देन यू विल कम अवे डिसअपॉइंटेड. लेकिन अगर आपको स्लो बर्न क्राइम ड्रामास, मॉरली ट्विस्टेड कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स पसंद हैं, विजय वर्मा, इफ यू वांट टू सी हिम ग्रेजुअली टेक कंट्रोल ऑफ अ स्टोरी बाय जस्ट हिज परफॉर्मेंस डिस्पाइट अ वीक स्क्रीन प्ले, देयर इज प्लेंटी दैट यू विल एंजॉय इन दिस. क्रिटिक्स आर आल्सो क्वाइट डिवाइडेड. इंडियन एक्सप्रेस गेव इट 2 out of 5. रॉटन टोमेटोज पे इट्स 75% फ्रॉम क्रिटिक्स. एंड अकॉर्डिंग टू मी, परफॉर्मेंसेज के लिए देखिए, पीरियड वर्ल्ड जो उन्होंने बिल्ड किया उसके लिए देखिए. ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर मच बेटर दैन द स्क्रीन प्ले इटसेल्फ. And it's a decent, decent bet. See what I did out there. But chalo, at this point, I am also as confused as you are. Dekhkar hi decide kijiye ki aapko pasand aaya ki nahi aaya Matka King. Let me know what you thought about the show. Agar aapne dekh liya hai, then definitely leave a message on our Instagram 106.2 a Big FM. This is the Big Binge with me, Sid.

0: are you?
1: So that's it for this episode of The Big Binge with me, Sid. आप जानते हैं जैसे वीकेंड आता है, the one thing that you have to look forward to is this show, which saves you a lot of time. You know, you could go to so many websites and so many videos on YouTube and reels on Instagram just to figure out and decide at the end of all of this over information कि किस शो को देखें, किस OTT फिल्म को देखें, नहीं देखें, and then you end up kind of wasting a lot of time. So इस काम को आसान करने के लिए दिस इज द शो. टुडे वी स्पोक अबाउट मटका किंग, विजय वर्मा का वो शो जो कि अप्रैल में रिलीज हो गया था ऑन प्राइम वीडियो, एंड पीपल स्टिल कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. पीपल स्टिल कांट डिसाइड वेदर दे एक्चुअली एंजॉयड इट और डिडंट एंजॉय इट. सो या इनकी जगह रिकमेंडेशन, अगर आपके पास कोई ऐसा शो है, कोई OTT मूवी है जिसके बारे में आपके मन में कंफ्यूजन है कि यार देखूं कि नहीं देखूं, यू नॉट एबल टू डिसाइड, इफ यू वांट मी टू सी इट बिफोर यू, या यू कैन ऑलवेज पुट मी इन द फायरिंग लाइन एंड सेंड मी योर रिकमेंडेशंस ऑन आर इंस्टा पेज, दैट इज 106.2 बिग FM, 106.2 बिग FM, दैट्स आर इंस्टा हैंडल. वहां पर जाइए, लीव मी अ मैसेज. आज का शो आपको कैसा लगा? बुकेज, ब्रिक पैड्स, मोर देन वेलकम. आई एम सिड सेठ, SIDSETH, एंड आई एम गोना सी यू ऑन अ मंडे मॉर्निंग शार्प एट 7 ऑन द बिग ब्रेकफास्ट. टिल देन, enjoy. Bye-bye.